एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राग जोग

ताल दो ताल तीन ताल चार ताल और चार ही राग माल कौश चंद्र कौश सूर्य कौश जोग कौश चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई जब दिशा संगत में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना सगल संग हमको बने आई जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु दे पाई सब में रव रहे प्रभु कह देख देख नानक की साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा ऐसा साडे सामने ना कहा कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ ए तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहते जी ये सानू लिखा दियो तराना असी तो इस तरह की बंदिश कभी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणा नमस्कार की इतने दुर्गाना मंदिर की बात है सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तरह ने श्री सर्वलोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर विद्यमान ने कभी आप दर्शन करना तो इस

चार पंक्तियां हैं। धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी दे मंदिरना धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी दे मंदिरना धागिरदी प्रिक्ते बन धागिरदी तोम तोम तोम तेरना।

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, बिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा, और दीन जो है वचित्र वीणा में वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

0: जल पर घर तो हरे वंश बदत में घर तो भाग वाले वंश बदत वाले वंश हरे वंश बदत में घर तो भाग घर तो भाग के वंश को सुनवास की तैयार वंश कुमार या और घर बताया सुनो से राम हर कृष्ण
1: अनहद अनहद अनहद बाबा जी नंद सरोवर पाटी और सरोवर सुंदर बाबा में

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत इस रात दुदाई दया खेले करनी आप अपनी मारे जपो जिन्नी नाम मसक नानक।

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान। कट कट के अंतर की जान तू भले बुरे

सरदा मन की पूरे प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जान दे। जीव दे मन अंदर की मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जान दे। जिदे अगे आके असी शीश नवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की चाहता की। प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर की बुझ लैंदा, देख लैंदा कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए सतगुरु देंदा है। क्यों?

अंदर जामी पुरख सुजान प्रम मेरा अंदर जामी जान प्रम मेरा अंदर जामी जान पुर पूरा।

अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर के बलिहारे आ गए सुख पाछे सुख सहजा।

जस्म हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा सब कुछ करन कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, जिदा एहो जिहा खसम होवे जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे ते ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानदा है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनू ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा निर

मानुक अब मान ले प्रभु मेरा अंत जामी जान। वो प्रभु सब कुछ जान दे साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर ओ गुरु पावनी पूरी कर देवे। खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है। इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए। जो खाली चोली आए ने पर के गए ने जो रोंदे आए ने हंसते गए ने ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक्को जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है। ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे चोली विच दान पा दिता जावे उस दाते दे दरबार च आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मंग कर लई ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए दान मिल जांदा है। आ कि कहिए तू करता सब किछ जानदा तू तो जानना है परमात्मा मैनू की चाहिए मैनू की लोड़ी दे मेरे मन अंदर इच्छा की है मेरी भावनी की है तू परमात्मा जानना है तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं।

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर्दे आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप, सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ये अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ये तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवै, नाम रूपी रस प्राप्त कर। ओ अमल पी जिहड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिहड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

hatta gururu izledim. Bir gün apre tüm şehadet yer. Man प्यार से सता रहा है आप रसोई च बैठ के गुरबाणी पढ़ते हैं सिमरन करते हैं भोजन तैयार किया एक ख्याल कि कलगी का किसी पातशाह जी ने आज अपने अस्थि प्रसाद किया माता जी श्री जी जिसके कलगी का किसी पातशाह जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं उत्थे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी कर सिख न बुलाया जा सिखा कवि जी ने बुला के ले सिख आए हाथ जोड़ के अरदास की थी बहुत लोग की नाथ सदगुरु माता जी याद करते सतगुरु श्री दशमेश पिता जी खड़े आए नमस्कार की थी माता ने सोना आसन बिछाया बैठ प्रसादे का थाल परोस के हजूर दे के रखे कवि जी साहबजादे

कंचन नारी में जियो नौबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

0: करेंगे।
1: हम पापी तुम पाप खंड।
0: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले किवें चंगे हो। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुर ख्याल

0: हम अवगुण तुम उपकारी।
1: मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो।
0: मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे।
1: ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन।
0: एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी,
1: कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है।

0: नखंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा, ते नाम मिलदा कित्थों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नूं नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि इह गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पासिओं शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराउण दी की लोड है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहयो।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह ने मुकाबला

हमारी जेबा एक ग्राम थके गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आ हर तुम बड अगम अथाह।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

अंतरूप मंगल सब जाके थप थोप सुनिए घर पाके राज में राज जोग में जोगी तब में तीसर दस्त में भोगी त्याए त्याए भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।